0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के अर्थद्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरण ने राज्य

0: अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
4: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस

0: टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী বিলোনিয়া শ্রোতা বন্ধুরা, এখন শুনবেন ছায়াগীতি অনুষ্ঠান, শুনবেন বিভিন্ন বাংলা ছবির গান। আজ 25শে বৈশাখ, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। এ উপলক্ষে বাংলা ছবিতে পরিবেশিত বিভিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের ছায়াগীতি অনুষ্ঠানটি। বন্ধুরা, কবিগুরুকে নিয়ে কিছু বলার বা ওনার গানের কলিকে নিয়ে কিছু বলার দুঃসাধ্য আমার নেই, তবু অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী কিছু কথা তো বলতে হয়। কবিগুরুর গানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায় থাকে, রীতি পর্যায়, প্রেম পর্যায়ে, পূজা পর্যায়ে, এরকম ভাগ করা থাকে। এখন শুনব এখানে প্রেম পর্যায়ে গান। এই গানটি গাওয়া হয়েছে চারুলতা ছবিতে আর গানটি গেয়েছেন কিশোর কুমার।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय को सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी।

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं लगातार 4थी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में गुरूवार तक लू चल सकती है। मौसम विभाग ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट

0: वोट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ। অনুষ্ঠান শুনছেন 103.7 MHz ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন প্রচার তরঙ্গে আকাশবাণী মিলনিয়া কেন্দ্র থেকে। শ্রোতা বন্ধুরা, এখন দেশবন্ধনা অনুষ্ঠানে শুনুন বিভিন্ন শিল্পীর পরিবেশনায় কথায় গানে দেশাত্মবোধক গান।
2: গৌরী শৃঙ্গ তুলেছে শির, বহিছে সিন্ধু গর্জমান, ভলগা যমুনা রাইনে নাইলে, মিসিসিপি মিলে তুলেছে তান নওজোয়ান। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর শান্তি ও সংহতির যে আন্দোলন বিশ্ব যুবশক্তিকে সংগঠিত করেছিল, তারই প্রেরণায় এই গানটি রচিত হয়েছিল। দুনিয়ার দিকে দিকে মুক্তির যে প্লাবন এসেছিল, যে নতুন মানচিত্র সৃষ্টি হচ্ছিল পৃথিবীর, এখানে তারই অভিনন্দন এই গানে।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईओएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौचीशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हामी आंखा और नबार वाते फैमानी महान चिनाई फिया फंगरोग बक्सा हंग तो टोंथक जागै मानो हाउ खाफोंनो मारकिसिं नरनि खक्तै ककतां कक्लब कथमारक खनानाय नु खनानाय तिनियो आं बेलाय खातुंजाक नरक सेकांनि स्लाय रोंबायखा तायबो सैनानि सानानि हाया दिबाना हाउ हंके तिनि बाहायनो जों खोनालायनाय खाफोंनो मारकिसिं फियाबा ओ वातै नबार फायै बुफां वाफां सोबायै रोमान्न ओ जराव सों थांलासु खायथानियो सोंनो बेलाय देरारि रेखा आसोखे फेरां ककहा आसोखे नबार कतर सिब चाखा ना नायनायदि नरकबो नुखोना वातै वाग्राखा वातै वामानि उल हंखा केन बुफां याफां खाबग यारुं रक हा रकन कसम रि रिरखा वातै बे बाक्सा नबार फाइबा थाके बुफां न झांगिरै बाक्सान खिख्लाय रैरखा तै वातैनि उल नबार फाइखा नबार बे बाक्सा कथर क्लायखा कथर क्लायै तामुख्लायखा सिनि नक सिनि नक हामथाया नखुं रकन सोप्लाउय रैरखा आसोबायसिमि बायाखौ तै स्राबसानि उल हंखे बरक बानकुन्द्रि नसे रिंगि तुबुखा हाके ओ बानकुन्द्रि बुफां कुवा गिया तंग्रग मारकन ब सासुका सोबायख्या मुर्खा उफ बेलाय खागाम स्रे स्रेंखा बन बागैन खाबांनि मारिगिसिं अजराव आं वान सुखा তাই অনবার কত রক ফাই তংমানে ও জরাও কিচ্ছা মাস হইয়া ওয়াতই নবার কতর নতুই তাই ও ওয়াতই নবার কতর নতুই আং যে ককটং থাকে সেই মানে অবন আং নর যতনি ইঙি নাই আং পরীক্ষণার নাই দো আও হাইকে খাবনে মারগিসিং ওয়াতই নবার কতর নতুই নাই ককটাং টাং সীমানি নর যতনি বাগৈ নর কিসা খানাই নেবেগ্রদি আবনি উল হাঙ্কে নরকনি কক দুগনি বিশিংতৈ নরনি খোকতৈ ককটাং ককলব কথমারক খানালাইনাই আও হাইকে সিনে পান্ডানি ইয়াফাঙ্গ খাবনে মারগিসিং আর নরক যতনি ইঙ্গি নাই আং তাংসা ওয়াতই নবার কতরনতেই সৈমানে অব নরকনি বাগৈ যত্নি বাগৈ তাংসা কাং পরিউই খনারগ্রা শিওয়ান দো নখা সমকা ফাগুনা কপুতি সঙ্গে মুখাং সমখা বাক্সাবাহন ফাই ওয়াতই ফাই বাক্সাবাহন তাবুকতা ফাইক্রুদি নখা গ্রুমসারুই ঝিলিক জালাক ফিরাং ককা খাও কিরিমা হাফখা সুমুই কসমনি ওয়াতই রূপ রূপ ওয়াখা ওয়াতই ওয়াখা হারে ফাপুং তৈ লম্বাইখ্যা কৃষানি নুখুং কপলা নগ ওয়াতই ক্লাইখ্যা ওয়াতই ও ওয়াতই আশ্রদা নিনি খাইরকমা করই নক সিংহ টংতই আথুকিরি নুহুরমানি আলামাতৈন ওয়াতেইব ক্লাইখা চামুং নুমুং থুয়াম টংথাই বেবাক নকমাখা আসুক বাই সিমিং পায়াখো ওয়াতেইনি উতুং উতুং নবার কতর শিবচামানি খরাং স্রাবসানি উলন দুফুং দুফুং নুখুং বুফাং ওয়াফাং কুয়াকমানি খরাং আসুক বাই পায়াখো নিনি সামুং কথরব নংবাই বাক্সা ফাইয়ৈ নুখুং সোপ্লা ফাইও ওয়াতৈ নবার কথর নরকনি কিসিংনি হালক আশ্রক দাকরাক নক হুক বুফাং ওয়াফাং সোবাই বাইখ্যা রাবারনি বিশিংতৈ নুখুং নাইয়ৈ টংজামানি আবনব মথাখা আশ্রক দা খাকরাক নরকনি আশ্রক বাই পায়াখো ফাংসা ফুংসু টংরক মানব পাইথাগোখে বানকুন্দ্রি ফাইয়ৈ ফুনুকা বিনি ফান বাক্সাবা ধ্রুগ ধ্রুগ সাসুখা ফুইসাখা বাকসাবা মাজারণ চখা ও নরগ্রতন সক সকমর নাইমাং ওয়াতই ফাইগ্রাকা বুফাং ইয়াফাংনি হা কসমখা নবার শিবচাকা বুফাং কুয়াখা কথর ক্লাইখা নুখুং সেপলাখা বানগুন্দ্রি ফাইখা মূর্খা মাজারো সেবাইখা নরকনি কথা জাক ফান মূ সাবাই সুরসানা গ্রৈ খাবংনি মারকি সিং ওয়াতই নবার কতনতই সৈমানি সৈ নাইগ্রামানি ভাইংখা সেমানিয়া ফিয়াবা নরনি খুক দিয়ে খান বাকি আংকে খাতং যাক আও হাইকে সঙ্গি রেগ্রাখা তাবুকে ধ্রুক ধ্রুক নরকনি খুক দই সকতং কগলব কথমা বসারক সৃক ধ্রুক খালাইসাই না হাইকে মনসে সঙ্গ রসাম তং সঙ্গ তাই ফিয়াবা খাবনে মার্কিং নরক গ্রং হরনানি তাপক দি 03-81-232-6253 ককদুক নাম্বারনি বিসিংতেই নরক আংবাই গ্রংহর দি সকাং কথমা কগ্লব রক খালাইনাই না হাকে অজরাও রসাম তং সালগার না বৈকন্ত নবার শিবমাবাই নীলিমা তাই ববতুসনি খরাঙ্গ রসামং তং সঙ্গে হেকে খাবনে মারকিং আবনে উলো নরেন কক দু আং রমসিনাই দো

0: 你家不啊可乐沙你就先推动不如你能够让你和生活回来一下阿不够不推啊不
1: 嗯
0: 你个推啊跟着不咋个回报嘛那还得讲过我拍摄的时候出了这个东西过
1: 嗯
0: 你个阿不够不出了这个东西不都回去一下吧我那么给你一下吧还出回去跟土瓜大不会吧
1: 嗯
0: 但我个不阿不能我就说你哪个人呢给不上个不给你过那我可都要带你一下吧
1: 嗯
0: 可都要带你一下看到啊都要带你们那么不害羞还出发现个比你要对对你看你看我们都唱个七十块的
1: 嗯
0: 你我买的是谁的钱了吧你看我回你们一个吧
1: 嗯
0: 我把他们的十二十二块的梦给你看看那个还还不不把他唱给你我不要用对对其实不起我不要买的那他们要给你讲给吧不起我回家吧
1: 嗯
0: 别人不可以用了把他呀这不起我我要买的回来不可以用了把他用来
1: 嗯
0: 不理我心感觉要用了不动不动把他唱我啊姑娘上给用了把他呀那一天给他们满的满看他
1: 嗯
0: 你跟满的发现给我还很回的这个你想跟那他们来接不？阿不个，俺大屋具体还叫什么东西呢？具体还叫东康个些，俺我买了那么些呢。
1: 嗯。
0: 你看阿不就个，土呢好来来着，我不懂对吧？我伢儿呢，他们是来那些呢，给不接待下，那肯定那些，乌达乌达来家，对，我可是听有个把具体还叫东府。
1: 嗯。
0: 那还来，还来那小来毛来来家。bono nono ka bo phang sa khasi ni sinai bangra bale kun mote bo phang ro thalang nai ri kutu ba ke ya kun khai ul ta ka pen da khasi ri ka bo tom mokol chi ya bo
1: hm
0: ikam mokol chi ogli ya ke tam khla kya buddhi maliya bo fur lori no khari phane bo na hare tam sam ke a samay rang to da ka tongla
1: hm
0: da ka do ko da ka bo tu bu nai rang bak bak le mani jaga a bo phang to la wo ke bor bak le na jaga wo khasi cha khata
1: hm
0: 你看，开始在看看那大概着不？发布些东西啥？马龙哥，我阿什么那个吧？你们房东干事，你们房东干事，你们把来不啦？叫那干事干的呢？
1: 嗯。
0: 啊，我些各方面开，我些让不要大概不就不那把来普通看咯，莫好听那吧？哎，让来喝来，你等会报道报道，你们阿是，你们阿是，你们下来叫我什么个报告来？아동사시를거기아니본동원사아니시를거기를생각하는내부름바람하다가도가르쳐오지않다가르쳐오아버가뒤에서오야파괴를파괴를하면생일을파괴를파리신이랑따로서그리다훈이아이귀신구마야파리탈러랑박라신아신이보보탕냐오야니나서도부디동그러니폭미리라인에아랑생일도보이아이생일먹을래파내랑박라하이하이놓고록
1: 솔리동
0: 아숙자로다녀
1: 와벨라이한바이벨라이한바이예너아까동토구이동라디도
0: 아우아우아우
1: 예예예한바이한바이아우가방님말이기신그런허가양세니기신코럭자보럭다보아영만다이브각도이고리아오아고툼라이작하야디바나아우보록모하게고롱구통응라냐나요응이통라요흔히크나오이벨라이통터가아우 FM 40.dog mega harzo 제판다센크나이통라요아판다니센크나이통라이마니아분카 FM 우조엔토타이 FM 우조엔토니비싱트이 40.dog mega harzo 판다살브룸노크나나이बदल रोग्ने मुङ उङखा खापाङ याख्राई बदल ओ खापाङ याख्राई बदल रोग्नो सिनी एफएम उजोयन्तनो बेलाई हहम ददम क्लाई बरक तनलायु सालब्रुमनो बरग्ने क्रङमानी बरग्ने ककबिति एफएम तर्साथानियो हमसाथानियो ताइबो आ कहाम उङखा आओ खापाङ याख्राई बदल नरनि खा गोरुङको थुम क्लाई नरक मालायो बदल बदल अमहाइकेन नरक कुथुम मुइतंगलाइदि कक बिति चाबलाइदि थक थुगिया खपचा सालाई रसामुंग

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफो मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो तो घर चले।
1: नहीं मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: बच्चों, भूत बाबा की मुझे कहाँ गई? क्या पेड़ के साथ मुझे भी कट गई? चलो इसी बात से बजा डाली।
1: अरे ये तो मर्दों की खेती है, जब जी में आ बढ़ा लिया, जब जी में आ कटवा लिया, तो बच्चों बजाओ ताली। चल दिखा दे मेरे राजा को तमाशा, तमाशे वाली।
0: तमाशे वाली, तमाशे वाली क्या करता है रे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मेरा नाम तो फूलमती है, फूलमती।
1: अरे फूलमती हो या मधुमती, चल बच्चों को तमाशा दिखा।
0: पहले पैसे निकाल।
1: अरे निकालता हूँ, पहले बच्चों को तमाशा तो दिखा।
0: आ जा।

0: आओ खापाङले मारेकी सिंह दुश्मन 1971 फिल्मले रसामुङ खना बाख्या सुजरा आ लटा मंगेशकरनी खरांगो रसामुङ न कबखरनाई हिंकाके सिनिबुखु ककरा कोनिका दे बर्मा तखजलानी बरक्ताबो मान्दैनि दुई नं गोरिया दा दुई गोरिया हो बरकु थुमलाजा खापाङ याखराय बदल खाख्लायो रसामुङ खनावै बरनि खापाङ रक ताइसाले तंथक बायखाना तै नर तंथक मानि जराबो तै किछा तंथक रि मानखाना नयां खाख्लायो आव नायफियो नहेके ककदुगो साबो तंफि हेलो
1: हेलो आं त्रिवन्दले कृष्ण मोहन मुरासिंह नागर
0: औ तै वन्दले कृष्ण मोहन मुरासिंह
1: ए आंला किसा अमर बंगला बा नुआंसे कुसोंगा नुता
0: आव आव द बेलाय हामबाय बेलाय हामबाय
1: द द गतिनि हिन्दी दि गान खराय नाग
0: द सागरा दि बोर सामों खनाना मुसों दागत
1: द जों बात सामों खा एके राजा एके रानी राजकुमार
0: फिल्म नि मुंगतम
1: जंगी बात
0: जंगी बस
1: ए
0: बा
1: एके राजा एके रानी राजकुमार रानी
0: बा जंग बस ना
1: ए ए

आओ खबरें मार्केटिंग नरोबाई हिरसामुंगरोखनाते खनाते स्टूडियो नी जोरा खोगो दीपोर्नी दामसा ताई शोती चार मुफ्लीक थामची चुकु उंगलाहा आओ है के नरोकनी हमजागमा चिनी खातुमा पांदावो नरोकनो नरोकनी खनातोक जागमानी हिरसामुंगरोखनारोई

0: आओ बेलाई खाना तो का आपके बारास सड़क से सुंदर 1986 बिशनी और समूह किशोर कुमार तय आशा भोसले ने खरांगो तय बेलाई खे तीन खाना तो जगमन हिंगांग के और समूह रंग आगे है कब संगवांग खाना मानी मा खाना पालो खा फिया बा नर नि रिक्वेस्ट रोक नि बिशिंग ते तीन सकांग समूह रख खाना मैं आं तीन हाई हाई खाना सेब मान खा तई आं बो तंग थका आओ नाइफियन हाई कौ जरा कक दुगो साबतंग हेलो
1: हेलो दागदा
0: आओ
1: दिवर का हम दागदा मा
0: सादी
1: आं लंकापुरानी प्रदीप से
0: आओ सागर दी प्रदीप बोर समखना नाय
1: आओ आं खाइत साजानी खना नाय ओ जिए तो जिए केसे हेनी रे मन बिन आपके हेने
0: ओ हाइसे
1: कैसे कहो बिना तेरी जिंदगी क्या होगा हेने
0: पा नंग नो समंग बा पाइरि रसाबाय मांखाब्लासा दिन मखरां दिन मखरां हामो
1: वा दागो दोय कक सागां काय आराम नांगो कक सामान ए कुसो कक ओ काहां काय छाबले दागो तो खाय
0: ए
1: खना तो गो खनांग ब आराम नांग दा कक मा सागाय दागो तो बा आमे कोलों मा यांग थांगो
0: नरो गर्सा मुं खनान बागै हाय छाना ता বগাইনাই লঙ্কাপুরানি প্রদীপ বর্ষা হরমানি হাকে বিন বগাইন ওর সামু ইংরা সেতেন

आओ खबर ने मारे किसी ताईशा मादे मालाइनो मालाया बिशुना ताई शुरोबीनी खोरंगो नरक रसामुं तंग्सा खना बाकिया ना आओ हके सं रसामुं खना लाइनाई ताई बसं खना लाइनाई है दीबा ते जरा तंखो नरक बाई दीपोर्नी दाम नई ताई शती थामची जरा आं तंगनाय आव हाके खापंगनि मार्केटिंग ओजरो यासामुंग तोसं खना लायनायनो हाइफनो नरगनां तैविशा मुइतुरो क्लाइ मारफि मानिंगा के आव सिनि नक नुखुंग रगो खाकसांगमा कोप्लुंग क्लाइ तंगनानि हिंगा के खरक्सा खरक खरक्सा ते खरक्सानि खानो सं सैमानानि नांगो आरो तामुनि बागै जंजाल रो फाय रो तंखा तामनि बागै खरक्सा ताई खरक्सानि बिसिंगो हालक हामिया रो उंनि तंखा आब्रं नुतैयै सों सिनानि नांगौ ताई आहायनो फान तंगो होनैनाय हायखाबा पावार खमता तंगो होनैनाय रन्दि साय होनजांनाय रो ब हिक होनजांनायनो हायनो ब बनो तामने कंट्रोल बेलाय खलायनानि हायखब खलायमानि आबो वासक हामथाया हाय दिबा के फ्रीडम हुनि हनमानि ओ फ्रीडम आबो नांगो तमुन फ्रीडम गरै हनगांके बररक हामसावै तरसावै ब मानग्लाक हाके जों मन बागैनो नक नुखुं रगो फान गनां रक हायखब पावार तै तंगनाय रक हायखब नकनि बखरखनि हनजांनाय रक बरक हि हायकाबा नकनि बसा रकनो गोबां जराव बरकनो तं कसां ख्लाय तनानि रिया बुटो ख्लायमानि हायकाबा सिक्रि सक्र ख्लायमानि रक नुगो ताय हाया हंगांके क्रमदि बसाय फनो केबेल लङै तंखांके बिहि करा काहा मङै तंखे बफनो बसायनो तं केसेब

0: কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে, আরো একদিন আপনাকে যেকোনো একটা অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ করা হবে। ধন্যবাদ, নমস্কার। শনিবার দুপুরের আড্ডা এই অনুষ্ঠানে শুনলেন রবির আলোয় নারী, আলাপচারিতায় ছিলেন মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা, কবি এবং প্রাবন্ধিক। আকাশবাণী বিলোনিয়া, এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিশেষ হিন্দি সংবাদ।
1: শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিম বঙ্গাল কে নয় মুখ্যমন্ত্রী বন গে হ্যাঁ। রাজ্য মে পহলি বার ভাজপা কি সরকার বনি হ্যা। ভাজপা নে বিধানসভা চুনাও মে ঐতিহাসিক জিত দর্জ করতে হুয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কে 15 সাল কে শাসন কা অন্ত কিয়া হ্যা। কলকাতা কে ব্রিগেড পরেড গ্রাউন্ড মে রাজ্যপাল আর এন রবি নে শ্রী শুভেন্দু কো পদ গোপনীয়তা কি শপথ দিলাই। এক রিপোর্ট।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
2: শপথ গ্রহণ কি প্রক্রিয়া কে অনুসার সবসে পহলে শুভেন্দু অধিকারী নে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে শপথ লি। উসকে বাদ এক এক কর মন্ত্রী কে রূপ মে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনিয়া, খুদিরাম টুডু আর নিশীথ প্রামাণিক নে শপথ লি। আকাশবাণী সমাচার কলকাতা সে কাশফিন নাহার।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, किसी अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़े पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र की कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

0: घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs were sworn in as cabinet ministers. Their cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtani.

थीमानजाक मानी बिसिंगी पश्चिम बंग ने पुला बीजेपी ने मंत्री अक्रा अंगई समय टांखा शुभेंदु अधिकारी हास्टेपा आरएन रवि बन समय टांगरखा बीनी लगे तब खरक बा मंत्री समय टांखा कलकाता ने ब्रिगेड पेरेड ग्राउंड समय टांगमा पांडा व केन्द्र ने स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कासमुंग नाइमथांग मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्र ने मंत्री जेपी नाड्डा बीजेपी ने बसंग बेरेम ने कासको नितिन नवीन त्रिपुरा ने मंत्री अक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहान खबई जुदा जुदा हास्टी ने मंत्री अक्रा संगमान जाखा पश्चिम बंग ने मंत्री अक्रा शुभेंदु अधिकारी हामबाइयाफारखा मंत्री अक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा हामबाई ककमुंग मंत्री अक्रा शाखा रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आसाइमा सालन रगई टंकसांगे बांगला ने कैसा आईचुक कताल पाइथग फाइख्या तय कताल मल आचाइख्या गियोगजाक तय हमसाजाक बांगला ने इमांग नाबक चारैती साजा गान ब शाखा केन्द्र ने स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह हा कतर तैलम साथक तय कुटुंग कलाई मूंग हालक सामूंग तंगना या प्रीरम न तिया टंगना तेये ककलम सालाने बगे खना दिल्ली कताल कुचुक बेरेम ने पांडव आसुक फंगना नवतीबा तय कुटुंग कलाई कलाईमाने बगे थैमाने ग्रै तय रंगरी खास्त थांगमा बांगया ख्लाइसुक नगे अ ककलाम सालाय जागना हा कतर ने उलनी चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ अंगने लेफ्टिनेंट जेनेरल एन एस राजा सुब्रमाने ब लाय थाना सेप्टेम्बर ताल नि सिमे बसंगने नायम थांनाय मथा टांग नग कतर सेंख्रा नि कक बितिरनाय अंगै पजा नावै टंगो रों तर बाहिनी ने उलनी बखरक अंगान भाइस एडमिरल कृष्ण सामीनाथन कासमुंग नाइम थांग कक संलाइन साखा मसांग सामीनाथन ताबुक न इस्टार्न नेवल कमांडिंग फ्लैग अफिसार कमांडिंग इन चीफ पजाव टंगो आकाशवाणी आगतला केन्द्र ने अकमा आवय खाइजा गई टंगो आकाशवाणी ने कक्तमा अपडेट माना ने बगे लग इन खाइदी www.newsonair.com न्यूज ऑन ए आई आर एप तई ट्विटर बै फेसबुक प्लेटफर्म ए आई आर न्यूज एलआरस यूट्यूब नाइदि न्यूज ऑन ए आई आर अफिशियल अबन कारी आकाशवाणी आगतला केन्द्र ने कक्तमा अपडेट माना ने हिंके ट्विटर एवं एक्स हेंडेल आकाशवाणी न्यूज आगतला फेसबुक ए आई आर न्यूज आगतला तई यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगतला नायना नांगाना हाफां बसंग पंचायत सकाट नईसाय नईसीबार कपलाई रग बुमूंग सकलाखा और हा कतर गनांगी कई ब्रिजी नई पंचायत अ बरम निबागे सैजाखा पंचायती राज ककसंग लाइनक साखा बस्कां ताल ने साल थाम साल मारियो दिल्ली कताल अबनी सकाट रमा पांडा संसा जागन ककसंग लाइनक ने ककथमन रगई नानाजी देशमुख मामलाई कहाम पंचायत सतता विकास सकाट निबागे हा कतर ने कहाम को हांकर कायथाम सैजाखा अबनी बिसिंग मामलाई कहाम हांखरंखा सिपाही जला हांखर अबनी सकाट ने रंगमारी खक बा रजाक कहामकुक अंगजाक पंचायत ने थाइमानखा उनकोटी हांखर ने कुमारघाट ने महकमानी कांचनपारी पंचायत अबनी सकाट ने रंगमारी खक सा रजाक बुरीरग ने बगे खापीजाक पंचायत अंगई फिल्थाम ने थाइमानखा सालथां हांखर ने हेजामारा ब्लक ने बैकुंठपुर कामी पंचायत अबन ने सकाट ने रंगमारी खक नैसी बारासाय हाइंग ककलम नाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आसाइमा सालन रगी हास्ते बेरनी पांडातिनी कैलाशर ने उनकोटी कला क्षेत्र संसार जाखा रंगनायखुंग तई ककथम हुकुम नायखुनी सुबा सुबाई जुगाली जाक अ पांडान चेंगिरेखा थं मंत्री टिंकुराय ब आरो ककनारेख थानी रवीन्द्रनाथ नि लांगमाताय सामुंग रक्न तई ककनारेखा पांडव कुबनी बिसिंग मानजाखा उनकोटी जिला परिषद नि कासको अमलेन्दु दास कैलाशर आउली नायम थानी चेयरपार्सन सपला रानी देव राय कुमारघाट आउली नायम थानी चेयरमेन विश्वजित दास आकसं आरो जुगाली जाक पांडव रंगनक नि परिनाय परिनाय जग्रग रवीन्द्र रसामुंग तई मसामुंग हुकमो पांडा खलाइखा ककथम हुकमो नायखुनी चेतन बाईनी फुंगो आगतला ने रवीन्द्र कानन कवि प्रणाम पांडा संसा जाखा पांडाना सेंगेरेखा स्नाम खत्ताई बानिया मंत्री सान्तना चाकमा आरो मानजाखा हुकमनी कक्लब नाय कमिटी ने चेयरमैन सुब्रत चक्रवर्ती आकसं कक्लब गोरंनी आसामा सालन रगै बांग्ला संस्कृति बलयनी चेतन बाईनी फुंगो हिमबत कैसा संसा जाखा आबनकारी साफुंगनी जुदा जुदा पांडानी बिसिंतै पालायनानी चेतन नाहारखा बांग्ला संस्कृति बलय आयंग सन्दन ने संस्कृति मथानी चेतन बैतिनी रवीन्द्र शतवार्षिक की नखलाव कपि प्रणाम पांडा संसा जाखा सिपाही जला आमचाय हांखर आमचाय जाय जेखे बरम रुमानी बिसिंती रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आसामा सालपालाय जाखा हांखर ने याफां पांडा संसार जाखा मेलाघर आरो मानजाखा मेलाघर पुर परिषद नि चेयरपार्सन अनामिका घोषपाल राय यांग सालसि त्रिपुरा हांखर आमचायनि याफां पांडा संसार जाखा धर्मनगर आरो मानजाखा धर्मनगरनि कथाल चंजाक एमएलए जहर चक्रवर्ती आउली नाइमटेन चेयरपर्सन मिताली रानी दास सेन आकसं आगतला वुमेन्स कलेज ने एनएसएस यूनिट ने साक्षरमबाई आम्बेडकर पलियो ल रवीन्द्रनाथ ठाकुर आसाइमा साल पालाइजाखा खयहांकर नायखुनी साक्षरमबाई तई गणकी रेमसी ने रिंगनक ने जुगालमुंग बाई खयहांकर ने
Berani Panda Songsa Jaka Gonki Remsi Ni Rungnogo Aromanjaka Khoi Jila

परिषदनि काजगोजुक अपर्णा सिंह राय गुमतीहांकर आमचाइनि याफांग पान्डा संसाजाका राजनगरनि भुवनेश्वरी मुताई नग बुस्कांग आरो मान्जाका एमएलए अभिषेक देवराय गुमती जिल्ला परिषदनि काजको देवल देवराय आकसं हास्तेनि संबरी कमिशन एडिसिनि भिलेज कमिटि संबरीनि बागै तिनिनि सिमि तियार ख्लाइमा सेंग्रेखा संबरी कमिशननि तिनि भिलेज कमिटि रकनि केन्द्रनि पुइला बेरेमनि बुमुं बुटां कारिना बागै साख्लाइमुं बक्सिनखा अ साख्लाइमुं नरगै बुथ केन्द्रनि पुइला बेरेमनि बुमुं बुटांग अ मेटालनि सालचिसा सालमारिव कारि जागाना अ बुमुं बुटांनि साका सानमुं तै कक आसमुं यासा जागाना मेटालनि सालचि बा सालमारिव अबनि कक पाइरे जागाना मेटालनि सालचि दक सालमारिव भिलेज कमिटि रकनि बुथ केन्द्रनि पाइथाक बुमुं कारिजाकनो मेटालनि सालचिसार सालमारिव हास्ते तिनि बसंलुको दरबार संसाजाका हास्ते केरंनि सेब्रनाय तांसंनि तांक्रायाक्सु राजर्षि चक्रवर्ती साका हाइकोर्टनि बेन्च कायसानो खबै बेबागै कायब्रिसि बा बेन्च काय नैसि बा साय बारा सिब्रि दरबारनि कक चरना बागै तिसाजाका हाइकोर्ट कायनि दरबारनि कक पाइरेजाका सान्जा जरा कायसि सायनि गोबां दरबारनि कक पाइरेजाका अल त्रिपुरा केमिस्ट एन्ड ड्रागिस एसोसिएसननि साखथारमा बाय तिनि आगतलानि बुटचं कुचुक माध्यमिक रिंनगर थैरिमा शिविर संसाजाखा अबनरगै जुगालेजाक पाण्डव मान्जाखा दलेश्वर रामकृष्ण मिशननि महाराज अमरतानन्दजी आगिनि एमएलए डक्टर दिलीप कुमार दास आगतला प्रेस क्लाबनि कासको प्रणव सरकार आकासं शिविर खरक नैरा थैरेखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएसन बाई कम थिंजाक तपन मुकमु अरनि नकआउट क्रिकेट बाटाइमुं तिनि सेंखा तिनि पुइला साल थंमुं काइथामुंखा एमबीबी स्टेडियम संसाजाक थंमुं चलमान संग विकेट काइबा बा युनाइटेड बीएसटी न मेचेनखा नरसिंगरनि पीटीए थंखालाव संसाजाक थंमुं हार्बे क्लाब रान काइसा बाय उल प्ले सेन्टर न मेचेनखाथाय नरसिंगरनि टीआईटी थंखालाव संसाजाक थंमुं मौजा क्लाब विकेट काइब्री बाय पुलस्टार क्लाब न मेचेनखा बिस्कांना दाम नैथि ब्रह हास्तेनि सालथां खुवाय दलायथाय सिपाही जला हांखर र फेरांक गै दामसाव ब्रैजि निसिमि पासि किलोमिटार दौ नबार सिबसाय वाटै फाइमाना होनै हजाकमुं रोखा नबार दैबारना खंखना सालनि तुंमारि साख थामजि थाम डिग्री सेल्सियास तै खामाव नैजि थाम डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि दङना तिनि सालनि साखानि तुंमारि थामजि बा डिग्री तै खामानि तुंमारि दंखा नैजि नै दशमिक चौखौ डिग्री सेल्सियास पारेना सोखां तिनिनि ककतमा बबाग्रक ताइसे पर्य मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी खिन्न नैसिमि नखा सालनि बेरायमाव तेलेङ्गाना दाय गुजरात थांगोन आरो मोजां मोदी जुदा जुदा सामुं बुटां ग मान्जागोन मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी मान्जाकमानि बिसिंते पश्चिमबंगनि पुइला बिजेपिनि मन्त्रीकरा अंगै समायतांखा शुभेन्दु अधिकारी बसंनि जतनि काहाम ओंजाक काहाम हांखरनि बिसिं नानाजी देशमुख काहाम कुक पञ्चायत सतता विकासनि सकातनि बागै साइजाखा सिपाही जला हांखर हाइं कल्पनाय रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि आसाइमा सालनो तिनि जुदा जुदा पान्डानि बिसिंतै जाय जायखे बरमरै पालायजाखा हास्तेनि चंबारी कमिशन एडिसिनि भिलेज कमिटिनि चंबारीनि बागै तिनि निसिमि तियार ख्लाइमा सेंग्रेखा कक्तमा परिमुं तिनिनि बागै अरनपा ह्या उलनि कक्तमा आवाय ख्लाइजाखोनो खोनाबुं फुं दामस्थितामै सति ब्रिसिव'